बोल दिसलाई छान हर पवी भान हसन जन तान मालक साची सखरा मानी हो साची जोड़ी नौ साची।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।